0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि आता आयुष्यामध्ये अशा आपल्या एका यशाच्या मार्गावर असतात की त्यांचं हे मार्गक्रमणच आपल्यासाठी प्रेरणा असतं। अशाच पद्धतीनं आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे मोहसिन शेख यांना। ते 2014 मेकॅनिकल या ब्रँचमधून पासआउट आहेत। सध्या मुंबई येथील घनसोलीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर म्हणून गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत। तेव्हा मोहसिन यांची जर्नी कशी आहे ते आपण जाणून घेऊयात। मोहसिनजी, मी तुमचं स्वागत करतो रेडिओ तेरणामध्ये।
2: थँक्यू सर।
1: जसं मी आत्ता एक इंट्रोडक्शन करून दिलं आणि आपलं जसं थोडंसं अगोदर मुलाखतीच्या अगोदर पण बोलणं झालं की मूळतः तुम्ही धाराशिव उस्मानाबादचेच आहात आणि साधारणतः 2014 तुम्ही पासआउट झालेला आहात।
2: हो,
1: तर आता जवळपास एक 10 वर्ष झालेली आहेत तुम्हाला पासआउट होऊन।
2: येस येस।
1: तर ह्या 10 वर्षामध्ये कधी कॉलेजवर येणं झालं होतं?
2: कॉलेजवर मोस्टली फार कमी झाला असं नाही, कारण जॉबमुळं टाइम भेटत नव्हता आणि असं कधी पण आलो आपण धाराशिवमध्ये तर आपण मॅक्झिमम ट्राय करतो की कॉलेजला एकदा यू व्हिजिट करू, कारण फारशी डेव्हलपमेंट झालेली आहे कॉलेजमध्ये, नवीन नवीन बिल्डिंग्स, स्पेशली प्लेग्राउंड आहे त्याचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे आणि वेगवेगळे नवीन नवीन सर दिसतात, बाकी पूर्ण फॅसिलिटी चेंज झालेले आहेत।
1: रेडिओ तेरणा,
2: रेडिओ तेरणा आहे आणि बाकी असं म्हणलं तर भरपूर गोष्टी आहेत की जे चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट झाले, म्हणजे आम्हाला जसं वाटत होता की असं असं होऊ ते झालेलं आहे। म्हणजे आता प्रत्यक्ष आम्ही बघतो की हे गोष्टी दिसून येतात आणि हे बघून फार आनंद होतो की आपलं कॉलेज आहे।
1: आप कम्फर्टेबल हिंदी में तो हिंदी में बात सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं।
2: ये देख के बहुत अच्छा दिखता है कि अभी कॉलेज बहुत अच्छा
1: चेंज हो गया,
2: चेंज हो गया है और आगे बढ़ रहा है।
1: ऐसे कैंपस में आके गए थे कि बाहर से बाहर देख के जाते थे?
2: कैंपस में ऐसा मोस्टली एक दो बार आया हूँ,
1: एक दो बार,
2: लेकिन बाहर से ऐसा विजिट ज्यादा होता है।
1: अच्छा, यानी दिल की धड़कनें बढ़ती होंगी ऐसे सामने से, अपने हाईवे से पुल के सामने
2: गाड़ी पे जाते तो फिर ब्रेक मारते देखते कॉलेज को। अच्छा। उसके बाद आगे ये होता है कि एक कॉलेज को देखना भी ये रहता है कि एक अठवन पुरानी यादें जो भी है आपके सामने आ जाती है कि कॉलेज ऐसा
1: कैसा था, कैसा था उस वक्त का वक्त, यानी 2014 पास आउट हो गया, 2010 में आपने शायद एडमिशन लिया था?
2: हाँ, 10 में पास एडमिशन लिया था मैंने, मैकेनिकल से मेरा ये हुआ था और मैकेनिकल में टीचर्स बहुत ज़बरदस्त थे हमारे सिखाने के लिए। फर्स्ट ईयर हमारे को पूरा एकदम चैलेंजिंग, एकदम नया और जैसा हम सुने थे वैसे ही था, पूरा स्ट्रिक्ट था, मतलब पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कंपलसरी ये, और बैचेस बहुत अच्छे थे कि ऐसा सब सर जो थे एक पैशनेट थे सिखाने के वास्ते, नए बच्चे थे और हम लोग को भी उत्साह था।
1: OMS थे क्या उस वक्त? आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट थे?
2: हाँ, आउट ऑफ महाराष्ट्र के बहुत सारे थे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मेरे बैच में है ना, नहीं भी बोले तो 16-17 बच्चे है ना आउट ऑफ के थे, मुंबई के भी थे और है ना इधर साउथ के भी एक दो बच्चे थे, नॉर्थ के है ना 16-17 के ऊपर बच्चे थे।
1: अच्छा,
2: तो अच्छी बैच थी, मतलब मिली जुली बैच थी पूरी। लोकली थे, लोकली 20-25 बच्चे थे कि लोकल से आते थे और बाजू के गांव से, मतलब लातूर से, बीड से, उस टाइम के भी बच्चे थे। तो हमारी दो बैच हुई थी, ए और बी।
1: अच्छा।
2: हाँ, और है ना सी भी थी बाद में, लेकिन सी को ये नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर की बात है। लेकिन बाद में लेटर ऑन एज मैकेनिकल अलग हो गया,
1: अलग हो गया।
2: फिर उसके बाद बाकी के बैचेस अलग हो गए तो सब है ना फिर अलग अलग, फिर ये हुआ। तो बैचेस अच्छे थे और अभी भी सब लोग कॉन्टेक्ट में, ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट में नहीं
1: मुझे
2: है।
1: तो आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आप यादों में वहीं पे कहीं पे तो घूम रहे शायद 2010 से लेकर 14 से में।
2: नहीं, कॉलेज आए तो एक ये रहता है ना, एक कॉलेज देखे तो वो याद आ जाती है कि कॉलेज में था, ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे, ये होते थे, एग्जाम्स होते थे, एग्जाम के टाइम का टेंशन अलग,
1: अच्छा
2: बाकी का सब ये रहता है। एक मतलब हर इंसान को एक
1: वो
2: याद में आ जाता है, और याद नहीं रही तो फिर वो
1: पिटारा खुल गया तो बहुत सारी
2: बहुत सारी चीज बाहर आती है। वैसे बैच हमारी बहुत डिसेंट थी, ऐसा ये नहीं था कि कुछ ज्यादा ये था, डिसेंट बैच थी और सब पढ़ाई वाले थे बच्चे, तो मजा भी आया। और पास आउट होने के बाद तो क्या, अभी थोड़े दिन मिलते रहे लोग।
1: अच्छा अच्छा, अब अभी हर कोई अपने अपने काम में।
2: हाँ, अब क्या, अब 10 साल हो गए, कोई शादी हो गया किसी का, किसी के किसी इसमें लाइफ में लग गए।
1: अच्छा अच्छा,
2: जॉब में वो टाइम नहीं मिलता है।
1: अच्छा, तो जैसे आपने पहले कहा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी यहाँ पे हो गई धाराशिव में।
2: जी, धाराशिव
1: स्कूल में आपने कहा था कि 12th में शायद आप, तो आपको यही तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में आना था या कुछ अलग सोचा हुआ था?
2: रीजन ये था कि मेरे पिताजी का है ना, मतलब है ना, कंडीशन उतनी ये नहीं थी, फैमिली कंडीशन मेरी बहुत बैकवर्ड में, मतलब बहुत कम थी, आर्थिक कंडीशन है ना जो रहती है फाइनेंशियल तो कम थी। बेसिकली मेरे पिताजी है ना टेलर है, और है ना वही रीजन था कि मुझे है ना खुद है ना खुद से आगे बढ़ना था, और इधर ही पास में रहूंगा तो बाकी खर्चे भी कम आएंगे, और लोकली अच्छा कॉलेज है, दो लोग बाहर से आते इधर पढ़ाई करने के लिए। तो पिताजी का भी कहना ये था कि सब बाहर से इधर आ रहे, तो इधर से बाहर क्यों जाता है? तो वो रीजन के लिए है ना मेरे को पिताजी ने बोले कि इधर ही प्रेफरेंस दे, और इधर है ना बहुत सारे लोग थे पिताजी के पहचान के, कि वो लोग भी है ना मुझे बोले कि अरे कॉलेज अच्छा है, पढ़ाने वाले सर अच्छे, पुराने सर है, अच्छा मेन तो क्या है, कहाँ पे भी गए तो सीखना ही है, मैकेनिकल जाएंगे तो कुछ अलग नहीं सिखाएंगे कोई, लेकिन इधर के सर पुराने हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यही था कि गेस सबका सजेशन यही था कि इधर ही लो, और उस टाइम 12th पास अपने को क्या समझ में आता है ज़्यादा, तो जो बड़े बोले वो हिसाब से हम चले।
1: अच्छा,
2: और लिए, और डैट वन इज़ गुड, क्योंकि है ना वो डिसीजन भी अच्छा था, और आगे उसमें ग्रोथ हो गई, कुछ सीखने मिला, इसके लिए तो आज अच्छे कंपनी में कर रहे।
1: अच्छा,
2: अगर सीखने नहीं मिलता तो थोड़ी अच्छे कंपनी पे हम काम करते, ये फायदा हुआ है। ऐसा नहीं कि
1: तेरना कॉलेज का चॉइस करना सही सही रहा, खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं हो गया, पढ़ाई
2: भी अच्छी हो गई, अच्छे टीचर्स मिले सिखाने के वास्ते, व्हाटएवर। लेकिन जो भी है ये चीज के लिए कि इधर एडमिशन का जो डिसीजन था सीखने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, ये चीज के लिए है ना बहुत बेस्ट रहा एज पर मेरा, जो भी है मेरा खुद के ऊपर, जो जैसा करेंगे हर एक का अलग रहता सजेशन, बट मेरा ये जो सजेशन है कि है ना जहाँ यहाँ पे एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ पता चली, और सिखाने वाले सर भी थे अच्छे से सिखाते थे, तो एक फ़ायदा हुआ, ग्रोथ हो गई, खुद की मेंटली ग्रोथ हुई, फिजिकल तो होती रहती है लेकिन मेंटली भी बेस्ट रहती है, वो मेंटली है ना कोई बाद में कोई नहीं कर सकता है, तो मेंटली ग्रोथ होना ये बेस्ट था, इसके लिए चॉइस तो बहुत सही रहा इधर लेना।
1: तो जैसे आपने 4 साल यहाँ पे पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई ऐसा आपका कहना है, तो ये कैसा रहा, मतलब जैसे कि आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट थे, बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, तो आपकी पढ़ाई कैसे चलती थी फिर यहाँ पे, यानी आपका करिकुलम 4 साल का?
2: पढ़ाई बैचेस थे, डिफरेंट बैचेस थे, और पढ़ाई करने का एक सिस्टम था।
1: आपने ऐसा भी कहा था कि डिसेंट बैच है, तो कैसे पढ़ाई होती थी आपकी सभी लोगों के साथ?
2: डिसेंट बैच
1: वर्ड बहुत ऐसा प्रोमिनेंटली यूज किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
2: डिसेंट बैच ये था कि है ना कोई किसी केस में नहीं था, मतलब है ना जो रहता है आजकल के स्टूडेंट्स जो अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं, कॉलेज छोड़ के अदर एक्टिविटीज में, तो वैसा नहीं था। हमारे बैच में सब लोग है ना एक दूसरे को पकड़ के है ना पढ़ाई के लेके जाते थे, मतलब है ना बैचेस है ना सब लोग कंटिन्यू रेगुलर कॉलेज अटेम्प्ट करते थे, सब लोग है ना एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे, इसके लिए भी डिसेंट बोला हूँ मैं कि मैक्सिमम क्या सब लोग है ना लेक्चर्स अटेम्प्ट करते थे, कुछ होंगे हमने पैसा भरा है कॉलेज के लिए,
1: तो हमको ये करना
2: है, हमको है ना जाना है, अटेम्प्ट करना है, भले कुछ समझ में आओ मत आओ, जाना है उधर बैठना है, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में था।
1: okay.
2: और एक दूसरे को हम ये चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे कि अरे अपन कॉलेज के लिए पैसा भरा है, पिताजी ने पैसा भरा है, घर से पैसा आया है, तो ये चीज़ के लिए मुझे बहुत डिसेंट लगता है। मैं कुछ फ्रेंड्स थे और अच्छे अच्छे आप सही जगह पे ही है, क्यों बोले तो उन्होंने टाइम सही जगह पे लाला, इसके लिए आज है ना उनको फ़ायदा है, गलत टाइम यूज़ नहीं किया कि कॉलेज का टाइम वेस्ट किया, तो ये फ़ायदा हुआ है। इसके लिए डिसेंट बोला हूँ कि है ना उन्होंने हमको समझाया, मतलब हमारे साथ की जो टीम थी तो ये लोग हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और अच्छी चीज़ के लिए सब लोग एक दूसरे को है ना सपोर्ट करते थे, इसके लिए डिसेंट बोला हूँ मैं।
1: अच्छा, नहीं तो आज जरूरी है।
2: हाँ वो जरूरी है, और ग्रोथ के लिए यही जरूरी रहता कि आपका टाइम से लगना,
1: दिखाई नहीं देता है।
2: हाँ आज दिखाई नहीं देता, आज क्या करते कॉलेज बंक करना है ये करना है, तो लोग ज़्यादा ये करते उसको प्रेफर करते, और टाइम जाने के बाद समझ में आता कि अपन टाइम वेस्ट किया, अपन चार साल चले गए, अपने चार साल के अपने इतने सारे पैसे कॉलेज को दिए और अपने को जो आउटपुट चाहिए था वो हासिल नहीं किया, क्यों कॉलेज बंक किया तो कहाँ से हाल ये हो सकता उसका। तो ये चीज़ था कि हमारे लोग क्या थे, हम नहीं भी आ रहे तो कॉल करके बोलते थे कॉलेज ले जाते हैं अपने ला, तो हम लोग एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट होते थे, और बाकी की चीज़ अदर एक्टिविटी नहीं थी कुछ है ना, बाकी का चीज़ का ये सिर्फ एक था कंसेप्ट कि सबको साथ में पढ़ना है, सबको साथ में आगे बढ़ना है, ये कंसेप्ट था। इसके लिए मेरी जो बैच है 14 तक की जो बैच थी हमारे 10-14 हाँ वो अच्छी डिसेंट बैच थी, अदर एक्टिविटी में भी लोग थे कि ऐसा स्पोर्ट्स में थे इसमें थे, लेकिन ये बैच बहुत अच्छी थी, क्रिएटिव थी, नए नए चीज़ है ना खुद से ये करती थी, डेवलप करती थी।
1: अच्छा,
2: इंजीनियरिंग्स में।
1: अच्छा, तर मित्रांनो आपण जी चर्चा करत आहोत ते मोहसिन शेख यांच्याशी, तर ते 2014 मेकॅनिकल ब्रँचमधून पासआउट आहेत, सध्या मुंबई घनसोली येथे सेफ्टी ऑफिसर म्हणून गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत। तो मोहसिन भाई, ये आप 2014 में पास आउट होने के बाद आपको मतलब उसी वक्त नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, कैसा हो गया था?
2: असल में मुझे जॉब उस टाइम नहीं मिला था। मैंने क्या किया था, कोर्स किया था, सब लोग हैदराबाद भाग रहे थे, पहले मुंबई पुणे गए थे, बट पुणे में उस टाइम है ना फीस बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग क्या किए थे कि कुछ हम लोग जो बैचमेंट थे तो सब लोग ने क्या किया था कि हमारा कंसेप्ट क्लियर था कि हम HVAC में करेंगे या फिर है ना इसमें कोर्सेज थे उधर, तो उधर जाके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उधर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें जाके हम है ना कोर्स करेंगे ये सोचे थे, और हमने वो सब लोग ने वही किया कि हैदराबाद में गए, वहाँ पे विद्यानगर बोल के एक है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो ये भारत सरकार की तरफ से है ना जो सर्टिफिकेशंस रहते हैं वो है ना देते हो, प्रोवाइड करते हो, उनकी ट्रेनिंग्स होती है 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ये विद्यानगर में है इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट है, फीस ज़्यादा नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, और पढ़ाते भी अच्छा ही है। तो उधर जाके है ना मतलब हमारे बैच में क्या था, सब एक दूसरे को है ना किसी को कुछ पता चल गया तो एक दूसरे को बोलते एक हेल्प करते थे, तो ये चीज़ का फ़ायदा हुआ। अभी मुझे भी पता नहीं था कि करना क्या है, तो मैक्सिमम सब ब्लैंक ही रहते हैं कि अभी जो मिला वो करेंगे। तो हम लोग उधर जाके कोर्स किए, और कोर्स करने के बाद है ना मुझे एक जॉब में भी मिल गई, जॉब हो गया उसका, तो उससे ही है ना मुझे एक दूसरे जो थे मेरे सीनियर गाइडेंस करके है ना मुझे बोले कि तुम इसमें आओ सेफ्टी में आओ, और मैं सेफ्टी में घुसा रोहन बिल्डर में, फिर उसके बाद दूसरा कंपनी है, स्विच करते रहे। अभी क्या अभी एक कंपनी में ज़्यादा देर मतलब रुका हूँ, 2.5-3 साल ऐसा रुक के है ना अभी चेंज किया हूँ, अभी चौथी कंपनी है मेरी गोदरेज एंड बॉयज़ में, गोदरेज एंड बॉयज़ के भी इंटरव्यू अच्छे रहते, तो हुआ है उसमें।
1: और ये गोदरेज एंड बॉयज़ में सेफ्टी ऑफिसर यानी ये आपका प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब काम का तरीका क्या है, क्या होता क्या है एक्चुअली इसमें?
2: ओरिजिनल में सेफ्टी ऑफिसर एक मुझे भी पता नहीं था, जब मैं है ना लगा हूँ मुझे भी लगा था कि भाई सेफ्टी ऑफिसर क्या रहता है, तो उसके बाद जैसे हम अंदर घुसे हमको पता चला कि भाई ये साइट पे जो लोग काम करते हैं, जो भी है ना साइट के अंदर है ना जगह है, जो प्लेस है, इन्वायरमेंट है, और है ना पीपल प्लेस इन्वायरमेंट, इनका कंसेप्ट यही है कि हम तीनों को है ना हमें ना जो भी हज़ार से जो भी है ना खतरे वाली चीज़ है इससे इनको बचाए कि मोस्टली क्या होता है लोग जहाँ पे काम करते तो लोग ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि केमिकल यूज़ हो रहा है या फिर है ना प्रदूषण हो रहा है, कुछ प्लास्टिक का चीज़ हो रहा है या फिर आदमी काम कर रहा है ऊपर से गिर सकता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सबका जो एम रहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट निकाले कि किसा है ना आउटपुट कैसा निकले, बट कोई ये जीवन के ऊपर, कोई आदमी के ऊपर, आदमी के जीवन के ऊपर, बाकी चीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है और जहाँ पे भी है ना काम चालू होता है तो उनके तरफ से है ना ये कंपलसरी रहता है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो एक्ट है अपने इंडिया के अंदर उसके थ्रू है ना हर जो साइट के अंदर आदमी लोग काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी रहता है। तो लोग ये बाईपास करते हैं। तो मुझे एक अवार्ड थी अंदर से, एक है ना अच्छा मुझे ये था कि है ना हम लोगों के लिए कुछ करें। और सब में ज़्यादा लोग है ना इस पर ध्यान नहीं देते, वर्कर्स मतलब लोग समझते कि यार छोटा कैटेगरी, ये कैटेगरी उनके ऊपर क्यों ध्यान देना है, बट उनका भी लाइफ रहता है, उनकी भी जीवन शैली रहती है। अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो वही लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही लोग देखेंगे तो है ना ताजमहल भी बनाने वाले वर्कर्स ही है। तो यही चीज़ था कि है ना हम वर्कर्स और है ना जो है अदर जो सोसाइटी है उसके लिए एक अच्छा काम करें। यही सर्च के अंदर है ना मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा मुझे कि तो मैं इसके अंदर घुसाऊँ। तो इनका बेसिकली काम यही रहता है कि वर्कर्स और दूसरी चीज़ है मतलब है ना इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषण ना हो, वर्कर्स की जान बचे, तो इसके लिए जो जो फाइटिंग करना है कंपनी से फीडबैक मतलब है ना ऊपर में काम कर रहा है उसको बेल्ट चाहिए, बेसिक पीपीस चाहिए, शूज़ देना चाहिए उसको, कटिंग कुछ कर रहा है उसको हैंड ग्लोव्स देना है, प्रोवाइड करना है नहीं करना है, ये कंपनी से हम झगड़ते कि भाई उसको है ना ये दो क्यों, वो लोग काम कर रहा है ऊपर से गिर गया मर सकता है, ऊपर से गिर गया उसका हाथ पांव टूट सकता है। तो इसके लिए है ना स्पेशली डिवीजन रहता है मतलब हर कंपनी में रहता है, आजकल है ना हर इंडस्ट्री में हर जगह कंपलसरी हो गया है कि भाई आपको है ना जो भी आदमी अंदर काम कर रहा है उसको है ना इंश्योरेंस देना है, उसको है ना जो भी इंश्योरेंस चाहिए, जो भी पॉलिसी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए उसको। तो ये है ना आजकल पूरा कंपलसरी हो गया है। तो ये चीज़ के लिए मैं अंदर घुसा हूँ कि देखते हैं। और इसमें मेन दूसरा भी चीज़ ये था कि मोटिव ये था कि पेमेंट भी अच्छा बढ़ता है इसमें,
1: अच्छा ओके
2: ये भी था, ऐसा नहीं कि इसमें और काम भी कम रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ज़्यादा काम रहता है। तो वो सोच के ये किया, सिर्फ ये रहना चाहिए कि आपको है ना स्ट्रगल करने आना चाहिए, आपको फाइट करने के लिए आना चाहिए, कंपनी से आपको ये चीज़ मांग के लेने के लिए आना चाहिए। कंपनी देता है ऐसा नहीं कि नहीं देता है, लेकिन आपको उसे मांगना चाहिए, आपको उसे लेने आने चाहिए। तो अगर ये लेने आता है आपको तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, कंपनी से निकालने आना है तो आप ले सकते हो, अगर लेने नहीं आता है तो फिर मेरा तो सजेशन, हाँ मेरा तो सजेशन है कि इसमें मत घुसो कि ये चीज़ है ना आपके हित में नहीं है, फिर आप फिर वो एक स्टैचू बन के रह जाएंगे जो कुछ काम का नहीं रहेगा।
1: अच्छा, तो ये जो आपका जॉब है सेफ्टी ऑफिसर का, ये मैकेनिकल के बाद ही होता है क्या, कोई भी स्ट्रीम का मतलब ये जा सकता है स्टूडेंट?
2: बेसिकली देखो इंजीनियरिंग और है ना अदर जो डिग्रीज हम कंपैरिजन करते हैं तो ये अदर डिग्री भी अच्छे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि ख़राब रहते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक इंजीनियरिंग का जो ये रहता है टेक्निकल नॉलेज जो आप बोलते हैं, क्यों हमारे इसमें बहुत सारे क्या रहते सेफ्टी में कि है ना बहुत सारे हिराची मेथड्स रहते हैं, हिराची मेथड्स के अंदर है ना एक है ना मेथड जो रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता है। आपको इंजीनियरिंग आता होगा, आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज होगा तो ये आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी का भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हिराची मेथड के अंदर क्या रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में तो बोल के रहता है कि हम है ना हजार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंजीनियरिंग तरीका यूज कर सकते हैं, कौन सा दिमाग आप लगा सकते हैं। तो ये है ना मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं जैसे है ना अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर है ना बाकी के है ना अदर इधर के ये हो गए CBRE हो गए, या फिर दूसरे कोई ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए बड़े, जैसा गोदरेज हो गया, गोदरेज है ना गोदरेज एंड बॉयज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी आ गए, या फिर है ना मैकेनिकल बेस्ड जो कंपनीज है वहाँ पे आपको मैकेनिकली चाहिए, वहाँ पे आपको है ना अदर ऑप्शन नहीं देता है। अच्छा। उसमें क्लियर क्लियर लिखे वाला रहता है, बी मैकेनिकल, बी इज रिक्वायर्ड प्लस एडीआईएस। ये एडीआईएस है ना, इसका एक सर्टिफिकेशन है जो सेफ्टी का एक सर्टिफिकेशन होता है, तो ये कंपलसरी है। ऑदर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑदर कुछ नहीं करते, ऑदर के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर उसको लिए वो
1: नहीं, मेरा इसलिए मैंने आपको ये पूछा था कि
2: ग्रोथ के लिए है ना इंजीनियरिंग चाहिए बेसिकली। मैं ये बोलता हूँ
1: इंजीनियरिंग का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने एल्यूमिनाई के जो इंटरव्यूज किए तो बहुत सारे मैकेनिकल होने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर आईटी इसमें वो चले गए, शायद उसका कोई कोर्स करके
2: वही
1: सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं था?
2: मेरे दिमाग में सिंपल ये था कि मुझे ग्राउंड पे रहना है, ये मेरे दिमाग में था। दैट वो एक रीजन हो सकता है कि पेमेंट नहीं बढ़ गया वो लेवल में जो आईटी में है।
1: आपके दोस्त है कोई ऐसे?
2: है बहुत सारे लोग है कि मेरे साथ, हमारे साथ बैच तो अभी 10 साल हो गए, तो कोई कोई बहुत सारे इसमें घुस गया है, सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे इसमें है, पैकेजेस में है, 24-25-30 लाख 70 लाख तक के भी पैकेज के लोग बंदे है कि अपने कॉलेज से जो पास आउट हुए से। बट ये है कि हर चीज का ये नहीं रहता है कि लाइफ मतलब ये नहीं चाहिए कि भाई अंदर से सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि दिल अपना, कि भाई अपन जो कर रहे कि अपने मन को भी चाहिए, लाइफ भी सेटल चाहिए, लाइफ भी एकदम, ये ज्यादा भी पैसा लेंगे चलो ले लो पैसा, बट आपके पास
1: वक्त
2: नहीं है खुद के, खुद के फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ये सोचा नहीं था। और एक बार ग्रोथ होने के बाद लगा कि भाई अभी करेंगे उधर, बट अंदर से ये नहीं हुआ कि भाई अभी उधर जाना, ये किया हूँ इतना टाइम इधर डाला हूँ। ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ग्रोथ है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ग्रोथ नहीं है। कोई भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि हम उसको सोचते नहीं है, उसको है ना फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो वो चक्कर में है ना हमारे बहुत सारे चीज़ रुके हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, अभी ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारे है ना AI है, AI से कनेक्ट हो रहे हैं, मैकेनिकल इज फ्यूचर अगर हम उसको AI के साथ ये करेंगे तो, क्यों अभी रोबोटिक्स हो वही अब ज़माना है कि है ना उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। अभी AI आए है तो है ना वो भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये सब मैकेनिकल बेस है कि आप है ना AI के लिए भी है ना जो रोबोट लगाएंगे तो उसको मैकेनिकल ही है वो, अगर उसको आप है ना AI के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ये है आगे है ना आपको उसके अंदर ग्रोथ है सब ये है।
1: अच्छा।
2: हर फील्ड के लिए ग्रोथ रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड के लिए कम रहता है।
1: ठीक है, एक आप पहले ऐसे थोड़े से कुछ गिने चुने लोगों में हो कि जो मैकेनिकल के बाद भी अच्छा करियर हो सकता है ऐसा आप कह रहे हो, तो मित्रांनो आपण जी चर्चा करत होती मोहसिन शेख यांच्याशी, 2014 ची मेकॅनिकल मध्ये पास आउट आहे, सध्या मुंबई घनसोली येथे सेफ्टी ऑफिसर म्हणून आहेत गोदरेज अँड बॉईज कंपनी मध्ये। तो आपने आप फिर से एक बार वो 2010-14 के बीच में लेके गए, आपकी डिसेंट बैच थी ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेकॅनिकल के स्टूडेंट इतने भी खामोश रहने वाले नहीं रहते?
2: खामोश
1: कोई तो
2: नहीं, नहीं
1: झगड़ा
2: फसाद हम लोग ये चीज में नहीं थे, ऐसा नहीं कि थे, कुछ थे और कुछ नहीं थे, तो हम नहीं थे समय थे
1: अच्छा, अच्छा।
2: इसके लिए कुछ हुआ नहीं है। बाकी
1: इलेक्ट्रॉनिक्स सीएससी के
2: आईटी हमारे एक बैच में
1: डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा घूमना फिरना,
2: डिपार्टमेंट
1: की तरफ ज्यादा घूमना ऐसा कुछ
2: नहीं, नहीं ऐसा कुछ थे बंदे ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं थे कुछ बंदे रहते ही है और होना भी चाहिए, वही एज है, नहीं तो अभी नहीं फिरेंगे कभी फिरेंगे। बट उतना ये नहीं था कि है ना किसी को ये करे, किसी को है ना हरासमेंट करे, किसी को ये चीज़ में नहीं थी। जो था वो सिर्फ जो टेम्परेरी बेस पे जो ये रहता है वही एक फ्लो था। बट है ना लोग है ना बहुत सही थे, ऐसा नहीं कि है ना किसी को समझा दिए किसी को ये करे। अपने कॉलेज में कैसा था, वॉच बहुत सही था, टीचर्स लोग का जो ये था, सिक्योरिटी थे, टीचर्स लोग थे, ये लोगों का वॉच बहुत सही था, वो उसके लिए वो डर के है ना कोई आगे बढ़ता नहीं था, तो वो एक प्लस पॉइंट था कि कॉलेज के अंदर है ना अभी लोकल ही है, आप सर सब लोकल ही है, तो ये चीज़ के लिए किसी का डेयरिंग नहीं होता था कि भाई
3: किसी को ये करे किसी को
1: और कल्चरल
2: स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग का बैच में तो हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए तक गए थे. मैं बेसिकली फुटबॉल खेलता था उस टाइम पे. फुटबॉल से हम लोग का यूनिवर्सिटी टीम बना था. अच्छा, बहुत अच्छा टीम था. हमारे सीनियर्स भी थे और ये थे, तो बहुत मजा आया उस टाइम पे. कल्चरल एक्टिविटी में हम लोग थे ऐसा पार्टिसिपेट. यूनिवर्सिटीज जाके आए, खेले. बाकी के एक्टिविटी तो होते रहे. सोलापुर में वो ये होता है अपना, उस टाइम है ना सेमिनार्स होते थे, तो वो अटेम्प किए. उसमें भी हमारे बहुत सारे है ना कॉलेज के बंदे है ना जीत के आए. और बाकी के एक्टिविटी में भी है ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते थे कि ये लोगों ने है ना किया है ग्रोथ. जो ग्रोथ करना चाहता है जिसको हाँ वो करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है. अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे है कि जिसने है ना उसका जो लक्ष्य रखा था, उसका जो है ना एम रखा था, उसका जो ड्रीम रखा था, उसके मार्ग पे वो रहा और उसके लिए उसने अभी से प्रिपरेशन की. मतलब जब इंजीनियरिंग में था, वो फर्स्ट ईयर में था ना, तब से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर था. उसने वो ध्येय पकड़ के चलता रहा और आज वो खुद का कंपनी खड़ा किया उसने. आज है ना खुद का है ना कंपनी से है ना अच्छा लगा. ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको एक प्राउड फील होता है, भाई ये हमारे बैच से बंदे है और ये लोगों ने हम काम किया है. ऐसे लोग भी है.
1: अच्छा,
2: तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्ग है.
1: अच्छा, और जैसे कि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आपके पिताजी जो थे, आपके घर के हालात थोड़े थोड़े सोसो थे, टेलरिंग का काम करते थे, तो जब आपका ये सब अब जॉब लग गया, सब कुछ हो गया, चलो बेटा तो कम से कम टेलरिंग में नहीं आ गया, सेफ्टी में गया, क्या क्या फीलिंग क्या होती है?
2: इस समय बेस्ट फीलिंग ये रहते है कि आप है ना जो पिताजी से पैसे ले रहे उसके जगह आप है ना घर पे पैसे दे रहे
1: हाँ.
2: ये समय बेस्ट फीलिंग रहती है. ये हर जो भी काम करने पे जाता है, जो भी काम करता है, उसके लिए है ना ये समय प्राउड फीलिंग रहता है, प्राउड मोमेंट रहता है कि हम अपने पिताजी को है ना, मतलब पिताजी को देते नहीं है हम लोग, ये हम अलग लगता है. मतलब है ना एक उनका हम है ना कुछ फीडबैक कुछ दे रहे, कुछ छोटा मोटा है ना हम ये कर रहे, हम उसको कभी फेड़ नहीं सकते.
1: बराबर है.
2: ये मेरे दिमाग में पहले से ही कि भाई हम पिताजी का जो कष्ट किए से, जो मेहनत किए है, हम उसको कभी रिटर्न नहीं कर सकते. लेकिन हम है ना कुछ कर रहे हैं कि जिसके वजह से पिताजी को प्राउडफुल हो रहा है कि मेरा बेटा है ना कुछ कर रहा है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है ना पिताजी भी आज देखते तो बहुत खुश होते सब. मतलब एक है फीलिंग आती है कि भाई हम जो कर रहे उसका तात्पर्य यही रहता है कि हम है ना फैमिली के लिए कुछ करें. नहीं तो कोई है ना घर छोड़ना नहीं चाहता है. जो करते सब है ना ये इसी के लिए करते हैं कि हम है ना कुछ गर्व फील कराए अपने पेरेंट्स के लिए.
1: अच्छा,
2: तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम है ना कुछ कर पाए और पिताजी को भी गर्व है. इससे बड़ी और कोई बात नहीं है.
1: अच्छा, और अब आगे क्या है इन फ्यूचर? जैसे कि अभी तो 10 साल हो चुके हैं आपके ये जॉब को भी सभी चीज़ों को, तो अब आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि ऐसा कुछ करना है अलग?
2: अलग से ऐसा मैंने सोचा हूँ कि है ना भाई जो मेरी फील्ड है उसमें अपन टॉप मोस्ट जाए. इसमें है ना हमने ये सोचा है कि भाई अभी जो मैनेजर है, मेरे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो गए, इंटरव्यूज हो गए कंपनी की तरफ से कि है ना वो लोग है ना मुझे जोनल ये बना रहे, तो वो हिसाब से मेरे प्रिपरेशंस चालू है. ग्रोथ के लिए मैंने है ना यमी के लिए अप्लाई किया हूँ. यमी सस्टेनेबिलिटी बोल के एक है और है ना एनवायरमेंट है, ये चीज़ के अंदर है ना मुझे आगे ये करना है. अभी मेरा जो फील्ड है उसके अंदर यही है कि भाई आपको है ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक है और एनवायरमेंट है, और जो फिल वक्त यही है ना फोकस में है, यही चीज़ है कि भाई इसको पकड़ो, इसमें ग्रोथ करो. जितना हम सीखना चाहें ना उतना कम है. हमको सिर्फ है ना टाइम देना है और ग्रोथ करना है. आगे बढ़ना है तो भाई एक्सपीरियंस सिर्फ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है.
1: अच्छा, तो जैसे कि आपके लाइफ में कुछ तो अप एंड डाउन्स आए होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे रहा होगा, तो ऐसे कौन सी चीज़ थी या कौन से ऐसे गाने थे? अभी फिल्में देखने का, गाने सुनने का तो हर एक को शौक रहता है, लेकिन आपको ऐसे कौन से गाने थे या कुछ थे कि जो आपको मोटिवेट करते रहे, या क्या ऐसी चीज है कि जो आपको मोटिवेट करती रही?
2: मेन गाने मतलब है ना, ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे ये ना इंजीनियरिंग के टाइम पे है ना थ्री इडियट्स मूवी आई थी।
1: अच्छा।
2: तो थ्री इडियट्स बहुत आइकॉनिक था, दिमाग में बैठा था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। एंड ये उसके गाने हम है ना मैक्सिमम अपने दिमाग में थे।
1: आज भी वही चैंटिंग हो रहे हैं गाने कैंपस में आने के बाद?
2: कैंपस में आने के बाद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट मेरी रैली कच्ची नहीं है कि मैं है ना कुछ गा सकता हूँ।
1: नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा गाना है जो कि दिमाग में चला, हम क्या करते हैं इंटरव्यू के बाद वो गाना प्ले कर देते, ऐसा कौन सा गाना है?
2: जो थ्री इडियट्स में जो जिसने सुसाइड किया था, क्या नाम
1: उसका? हाँ,
2: तो वही है ना, वही गाना है, वही है ना मेरे को मोटिवेट करता है। मतलब है ना खुद को ये है कि उसमें ये है कि उदास होके बैठा है आदमी और है ना खुद को है ना आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, उसको चांस चाहिए। तो ये यही है ना एक मोटिवेट करता है मेरे को गाना कि अपने को चांस चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
1: और ऐसे लाइफ के क्या गोल्डन वर्ड्स है कि जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए समझो इंस्पिरेशन देते रहे? एक दो तीन गोल्डन वर्ड्स रहते किसी भी कि नहीं यस मुझे आगे जाना है।
2: गोल्डन वर्ड्स के ये है कि भाई मेरे को पिताजी हमेशा बोलते थे भाई जो भी आगे बैठा है आपके ऊपर भी जो भी है, आपके ऊपर कोई भी हो, मतलब है ना आपका बॉस हो, आपका कंपनी का मैनेजर हो या कोई भी हो, वो सब इंसान ही है, कोई ऊपर से कोई देवता नहीं है जो ऊपर बैठा है। वो अगर कर सकता है तो उसको हाथ पांव है, उसको भी वो ही है, उसको भी दिमाग उतना ही है, उतना ही ग्राम उसका दिमाग है, उसको भी हाथ उतना ही है, हाथ पांव उतना ही है, उसको अलग से एक हाथ एक्स्ट्रा नहीं है। वो अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे है ना दिमाग में पहले से ही था कि भाई वो कर सकता है ना, मतलब कोई ना कोई अपन कर सकते, सिर्फ ये है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जब आपको वो रास्ता मिलेगा ना आप उसे भी ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेट करता था। अगर मैं किसी को देखता था अरे ये कर सकता है तो चलो भाई अपन भी कर सकते, और कोई चीज़ है ना नामुमकिन नहीं होती है लाइफ में। ये देखा हूँ कि भाई अभी अब तो सब डिजिटल वर्ल्ड है, आप सब हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको है ना वो चीज़ के लिए ये चाहिए, गट्स चाहिए, करने के लिए गट्स चाहिए सबसे पहले, इच्छा शक्ति चाहिए, जिद्द चाहिए, और बाकी का है ना जो है वो स्टेप उठाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आप जो स्टेप उठाएंगे उसके बाद ही आपको है ना उसका है ना जो ये है उसका पॉजिटिव है जिसका निगेटिव है वो सब है ना आपके सामने आएगा। जब तक आप स्टेप्स नहीं उठाएंगे, खुद को है ना एक पाव उठाएंगा नहीं, तब तक आपको आगे बढ़ने के लिए ये नहीं होगा। तो यही सोचता था और इसके यही चीज़ से है ना आगे बढ़े कि भाई वो रह सकता है। और पिताजी बोलते थे कि कभी भी है ना मेहनत देखना है तो है ना अपने से जो कम कमा रहा है ना, जो गरीबी में रह के कमा रहा है जो, उसको देखो क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा रहेंगी, हमेशा आपसे ज़्यादा रहेंगी, या फिर उसको देखेंगे तो और मेहनत करेगा। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी। अभी मैं हम लोग की भी जॉब्स की जो स्टार्टिंग रही वो भी ऐसी स्ट्रगल में रही, तो हमको पता है कि भाई जो गरीब लोग रहते थे जिसको खाने भी नहीं रहता था, चलो हम लोग खा रहे, तो वो लोग एक वड़ा पाव एक है ना एक टाइम का खाना उसके ऊपर है ना पूरा दिन निकाल रहे और मेहनत कर रहे, हम लोग को सब मिल रहा है हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो ये लोग को देख के मोटिवेट होता था कि भाई ये लोग कर सकते ये लोग कर रहे तो हम लोग को भी करना चाहिए, कहीं से स्टार्ट होंगे, ये चीज़ है।
1: यस,
2: और वही चीज़ मोटिवेट की।
1: यस, तो मोहसिन शेख जी आपके पिताजी का नाम वो मैंने सज्जियुद्दीन जी। तो वैसे तो हमारे रेडियो के ज़्यादा सुनने वाले तो लोग तो टेलर ही ज़्यादा शायद वो भी रेडियो सुनते होंगे, तो ये आपका इंटरव्यू भी वो सुनेंगे, और बहुत खुशी हो गई कि आपने आके आपकी जितनी भी जर्नी है, क्योंकि आप पहले मतलब इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि यार मैं इतना बात कर सकता हूँ, आप देखिए आप लगभग 35 मिनट बात कर रहे हो।
2: अरे
1: तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की और आपकी जर्नी भी अच्छी रही है और आप आगे भी बहुत बढ़ना चाहते हो आपके ही फील्ड में, कहीं इधर उधर नहीं घूमना चाहते हो, तो मैं उसी के लिए

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, चूल्हे का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान।

0: मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगले,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो जो मेरे करीब आया,
0: ओहो
1: मेरे तन पे पड़ा जो साया।
0: फिर क्या हुआ?
1: यूँ समझो ना गले लगाया।
0: ची ची ची।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: कहती हो?
1: हो जाती है आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।